कार जग मह परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहयो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उबर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल।

शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानी है एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै दीस हुक्म।

है। सहज रंग दर्शन दियो रहियो संत हों टोल, साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्य है। मुखों ए पंडित मिठे वर्ष एक हों फिरियो, किन नहो पर क्यों लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को।

साध सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखण।

इव जोध कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरे तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरे।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज सवान संतोख सराचो सदा सील सनाह सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल

गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बिचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो है जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाच है।

कार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्या

पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दीयन गुर रामदास राड़।

तेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन कट है सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखो ना हो कियो ते अकियत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत त्या

तेरे जौहर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान दरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।

सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

सत जी धारहु मानस जन्म दे निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चहु जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंद है जो चरण सरण सुख पावे है परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपे है कर बेचित चाऊ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन करन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी।

दही पात खाहे जियो, देख रूप अत अनूप, मोह महामग पई, किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ, कहो कौन मेट सकै, ईस बम्यो ज्ञान ध्यान,

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

माल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

गुरु सम्राथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर दे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जां को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग, कबहु का को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको, शिव मन गह नात जात कबलास को।

तरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहे ओ सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गणं अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पणं तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनं कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करहो जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर

लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम निगम।

गुरमत ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस बखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बडभागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरडायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभो ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपती जपतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कह भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभवो उदवियो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस

पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उदार।

नवनिद नान खुट गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताणी हो गुर अर्जन कल उचर तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु मानियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरहु तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और ए काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब मह अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुन्दर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर पय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बस है संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारन, निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई, मन

नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संच रयो सो कवन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम पहै।

या किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंड ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर लाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पहु नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

परे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है बूझो हो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जहां हर भगत ना

नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संयम कमावै कर्म सील संतोख का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान

ज्ञान ही नंग अज्ञान पूजा, अंधवर तारा पाउ दूजा, गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी, माणू कल्ले उठी चल्ले, साध नाही अवेही गल्ले, राम चुरै दल मेल वै, अंतर बल अधिकार, बंतर की सेना सेवी है, मन तन जुज अपार, सीता लै गया दह सिरू,

वह सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्प है सर्प है सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाय। दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होवे। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवे। पूरे का किया सब कुछ पूरा घट वध।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो और तार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया जन नानक पार उतार माया मोहि जग भरमिया।

आई। मन मुख चंचल मत है, अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया, एक तिल थाई ना पाई। पुन दान जो बीज दे, सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई, दूजे भाए खुआई। जो बन जांदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात मोह।

अंदर शुद्ध नहीं, गुर बचन ना करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है, नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की राखदा, हौं सद बनिहारी तास। गुरमुख जो हर सेम दे, जन नानक ता का दास। माया पुयंगम सर्प है, जग घेरिया बिख माए। बिख का मारन हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिन कौ पूर्व लिखिया, तिन सतगुर मिलिया आए। मिल सतगुर निर्मल होया, बिख हौ मैं गया बिलाए। गुरमुखां के मुख उज्जले, हर दरगाह सोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तिन, जो चल है सतगुर पाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिव लाए।

पूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख कृपा तारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक।

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिनको पूर्व

बिन हर्षांत न आवई किसे आगे करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझिया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमावंदे अंत न पारा वार। हर कृपा कर।

जन सिज्जे बिन शब्द मुक्त ना होई भेख करह बहु कर्म बगुत्ते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुर नाउ ना पाईए जे सौ लोचे कोई हर का नाउ अत वड ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचे कोई मुख संयम हच्छा ना होवे कर भेख भवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोई माया मोह दुख सागर है बिख दुतर।

न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब किस जानदा, जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्थां पढ़ पंडित।

बहु चितवदि बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी मर बिन सजाई खिनवार।

सदा सदा हर गुण रवह, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रह, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमावंदे।

जे चलन सतगुर पाए मन मुख झूठ ना उतरै जे सौ धोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाए बुरा करे सो केहा सिज्जै अपने रोहे आपे ही दज्जै मनमुख कमला रगड़ै लुज्जै गुरमुख होए इस सब किस सुज्जै।

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए भाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सौ भाई लए हुक्म फराओ जह बसावह बैसह भाई जह भेजह तह जाओ एवड़ धन होर को नहीं भाई।

अस सतगुर मिलिया जल पाईऐ चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाय हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होई शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होय नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोय नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोय हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होय वडड़ै चाल चाल चलंबलै।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम सुमाय वाहो वाहो सत गुर पुरख है जिन सच

है जिसनो समत सब कोई। वाहु वाहु सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए। वाहु वाहु सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार। वाहु वाहु सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसते नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूर्ण

हुक्म अरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया पल पाए सदा सुहागण।

कूड करे आहार भिख माया धन संच मरह अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संजम करह अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग ना

पार लंघाए, गुरसिखा की हर धूड़ देह, हम पापी पी गत पाहे, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बधारियन।

रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनंत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

अपनी नदर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती अपदेश विचो भरम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कश तिस दैवस दूजी नाहे जाए नानक सुख आनंद भए।

गन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बैठे आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन। दिखियन स्यों काहे रचियो

गयो लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना औध जात है बीत, बिरद पयो सूजै नहीं।

मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हर

भई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक।

मुद्दा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औगुजरी।

असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख

प्रणाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर

परगास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई तर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडहार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता, तू आदि पुरख परंपर।

सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सत्यार मैंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लद्दा मन मुकवाया तू आप छोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ तब तुझ ही माघे तुझ बिन दूजा कोई नाघे। जी जनसब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है तो ही जन जाने हार गुण सदगी आख वखाने।

सहस्ता नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध इव चलत मोही सामय जोत जोत है सोय हिद चानन सामय चानन होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जोत भावे सु आरती होय हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद।

मद देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रस जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिका बोल विगुचना

तन सास अड़सठ तीर्थ का मुटिपता तिरकड़ मत विगास उत्मती सालहाना हच नाम गुणतास बाबा होर मत होर होर जे सो वेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाव पूजल के पीर आखी है ता मिले संसार नाओ सदाए अपना होवे सिद्ध समार जापत लेखे ना पवे सबा पूज खुवार जिनको सा गुर थापिया तिन मेट न सके कोय ओ न अंदर ना मनधान है नामो प्रगट होए नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए खेऊ खेर लाईए ता जियो के आ होए जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए नानक नाम सारे।

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

कोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पात है, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है, गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया, पार ना परम तिनाहा, हज बला अगला निरपो हर मन माहा, त्री राग मखला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा, नाठी एड़े दिन चार, पबन केरे पज्यो, टाल टुल जुमन हार, रंग मान ले प्यारिया, जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके।

कंड राजकुमार बिन सतगुर सुख न पावई फिर जूनी पाहे। हारे हार कंठ जी ने पहरिया कुरचरणी चितलाए, तिना पिछे रिद सिद फिरे ओना तिल ना।

सदगुरु सच प्रभ निर्मला शब्द मिला वा होए रहाओ शब्द मिले सो मिल रहे जिसनु आपे लहे मिलाए दूजे पाए को ना मिले फिर आवे जाए सब में एक वर्तदा एको रहा समाए जिसनु आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करे विचार मत बुद्ध पवी ना।

माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए, कर कृपा मेल आयन, हर नाम स्या मन आए, पोते जिनके पुन्न है तेन

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, हरहाव गुरमुख सदा सुहागणी, तिर राख्या उर धार, मिठा बोले निव चले, सेजे रवे पतार, थोबावंती सुहागणी, जिन गुर का खेत अपार, पूरे भाग सदगुर मिले, जा भागे का उदय होए, अंतरों दुख प्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख न पावे कोए, गुर के पाणे विच अमृत है।

अमृत सच्चा नामक है, तैना कछु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु

कुमाए जात सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए श्री राग महला तीजा काया साधे उर्द तप करे विचों होमे ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कब ही पाए गुर के शब्द जीवित मरे हर नाम से मने आए सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिग भवजर शब्द गुर तरना हर हाओ त्रैगुण सबा तात है।

क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाणा मन लई विचों आप गवाए, एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए, मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले ऊंज पड़ेगी खेत, हरहाओ मन की इच्छा पूरियां शब्द रहा भरपूर, पए पाए भगत करे दिन राती हरजू वेखे सदा हदूर, सच्चे शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी धीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो।

तिख जाय, त्यो मन साचा सच रता, सच्चे रहा सुमाय, आखण वेखण बोलना सबदे रहा सुमाय, बाणी वजी चौजुगी सचो सच सुनाय, होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाय, इनको मैल खदूर है जो सच रखे लिवलाय, नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाय, पूरे भाग सत संगत लहे सगुर पेटे च से आए, अनदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच हो जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम सुमाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे, सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइन, हर राख्या उर तार सच्ची बाणी सचमान सच्चे नाल प्यार, मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार, हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया प्रभ आपे लय मिलाए, अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत सुमाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए, जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिने आए, विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए, नदर करे प्रवे अपनी आपे लए मिलाए, सबके सुनदा वेखदा त्यो मुकर पए आ जाए, पापो पाप कमाऊं दे पापे पचे पचाए, तो प्रणदर न आवई मन मुख बूझ न पाए, जिस वेखा ले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए, श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई होमे पीड़ न जाए, गुर प्रसादी मन वसे नामे रहे सुमाए, गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्दे परम पुलाए, मान रे निरकरवासा होए राम नाम सालाए, तू फिर आमन जान न होए, हरहाओ हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर न कोए, शब्द सलाही मन वसे सहजे ही सुख होए, सब नदरी अंदर वेखदा जय पावे तय दे, होमे सभा गणत है गणते नु सुखनाग, बेकी कार कुमावनी बेखी माए सुमाग, बिन नावे ठौर ना पायनी जंपर दूप सहाग, जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार, गुर प्रसादी बुझिए ता पाए मोख द्वार, नानक नाम सलाहे तू अंत न पारा वार, श्री राग महला तीजा तिना आनंद सदा सुख है, जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार, सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी देतोन भगत भंडार।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश

तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग मोहल्ला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए। अंतर जोत प्रगासिया एक सिउ लिवलाए। मिल साधु मुख उजला

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

संता संगत मानस प्रीतम भगत सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन।

मेरा निर्मल तिस बिन रहन ना जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली हुई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए। इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस भंडार।

या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्लां की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तिचर वसे सोहेलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना दूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गात अवगत कछ नदर न आया संतन की रेण नानक दान पाया।

बूझे सात पंडित वाचे पोथियां ना बूझे विचार हर को मत्ती दे चले माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी सद सोसार केते पंडित जोत की बेदा करे विचार वाद विरोध सलाने वादे आमन जान बेन गुर कर्म न छुड़ सी कै सुन आग वखाण सब गुण मंती आखिए मैं गुण नागी कोए हर वरनार सुहावनी मैं पावे प्रसोए नानक शब्द मिलावड़ा ना वेशोड़ा होए श्री राग महला पहला जब ताप संजम साधी है तीर्थ की तेवास पुन दान चंगियाइया बिन सचे क्या तास जेहा रदे तेहा लुणे वेण गुण जन्म विनात मुंडे गुण दासी सुखोए अवन त्याग सुमाई है गुरमत पूरा सोए रखाओ बिन रासी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बूझे अपना वस्त्र ही कारबार विन वखर दुख अगला।

प्रिरावे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एको रब रहया दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना इया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोटड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान स जानिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता तिर रावे नार। एक तागे राह मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वाह पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। कारकुम आवे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाई है पये किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेख रजाए बिन घर नाम ना छुट्टी है गुरमत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हो में ममता जल बलो लोभ जलो अवमान।

मैं तुझ बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए हरहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चलसी कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए, जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुर सरनाई छुटिए मनमुख खोटी रास, अच ताद पासा की कड़ी गए शब्द विगा।

पहला राम नाम मन विद्या अवर के करी विचार शब्द सुरत सुख उपजे प्रवरतो सुख सार क्यों पावे तू राख तू मैं घर नाम आधार मन रे सची खसम रजाए जिन तन मन सा सिगारिया ते सेती लिवलाए हरहाओ तन बैसंतर होमिए एक रत्ती तोर कटाए तन मन समदा जे करी अन्तन अग्न जलाए।

तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोय हराओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासीए नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामुण सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचीए कर्म वस्त सुधाए मन बखौ में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इहो तनो अग्नि पास पिराण पौने के वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगीए मुआर लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवस जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए ज्यो बारक दूते माए बिंदल कमसो नाथिए।

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार तार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमान तरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

परम भुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो पुथा जाए। चौथे पद में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए, गुणवंती सालाया सच्चे।

सतगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए ऊरे शब्द सब सोझी होई हर नामे रहे सुमाए मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई क्यों रखे त्यों रहना कुर के शब्द जीवित मरे गुरमुख पवजल तरना वड़े भाग नाव पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन मसिया प्रव करता तैजे रहा सुमाई एक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया लख चौरासी फिर फिर आवे बिरथा जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अनदिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम सुवाते गुरमुख अमृत बाणी बोल है तब आत्म राम पछाणी एक कोसे मन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वस्ते मन आए तदा रंग राते सच स्यों

तेरे अंतर शब्द बसाया सईयां से सोहागनी जिन सए नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया।

हर आपे की मत दे गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के हों बलेगारी तिन को जिन घर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रगासिया मन हर घर मुठड़ा है मन हर घर जपन करे हर गुर सुननाई पज पो जिंदु सब केल विख दुख पर हरे हरहाओ धड़कड़ रमैया मन मसे क्यों पाईए कित पत गुर पूरा सदगुर पेटीए हर आए वसे मन चित मैं तर नाम आधार गए

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया।

जो मिलया हर दीवान स्यो सो सबनी दीवानी मिलया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखुरु ओस कै मुझ डिठ सब पापी तरिया ओस अंतर नाम निधान है नामो परवरिया नाओ पूजिए नाओ मनिए नाए केलवक सब हिरिया जिनी नाम त्याया एक मान एक चित से अस्थिर जग रहया श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजिए गुर के सह सुपाए आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए ता कर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोलई गुर के पाए सुपाए गुर विण सहज न आवई लोभ मैल ना विचों जाए खिन पाल हर ना मन वसे तब अड़सर तीर्थ नहाए सच्चे मैल ना लगई मन लागे दूजे पाए धोती मूल ना उतरे जे अड़सर तीर्थ नहाए मन मुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तांथिए जा सतगुर माए सुमाए महला तीजा मनमुख लोग समझाइए कदो समझाया जाए मनमुख रलाया ना रले पाए किरत फराए लिव ताज दो रहा है हुक्मी कार कुमाए गुरमुख अपना मन मारिया सब कसवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मंज सुमाए मन जो इसे सो लै सच्चे सब सो पाए अमृत नाम सद पुंचिए गुरमुख कार कुमाए विण मने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हड़हारिया ऊड़क सत कुमाए गुर प्रसादी मन जने हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावे मनमुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लै हिरदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी सहजे चाखी ते पया प्रकाश मिटिया अंधियारा जो सूरज रहन के राखी अदिष्टया गोचर अलख निरंजन तो देखिया गुरमुख आखी श्लोक महला तीजा सतगुर से वे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवे हो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जोथ पावे सो करे ऐना किशु ना जाए महला तीजा मन वेकारी वेड़या वेकारा कर्म कुमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए आत्मा दे ओ पूजिए बिन सतगुर बूझ न पाए जब तब संजम भाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब किलख पाप लगाती।

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परम लाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ। कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत नेचो मरना, रमैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, एन बेद पवसागर तरना, जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, ऐ करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अज चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमें तार चोहे त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनिया सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

तेरा जियो पिंड सबरास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निभ निभ लागा तेरी पाई तारक मावा जित पावा जा तू दे दयाला जियो प्रभु तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे पै कुंत साई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नांग सो पाया आड़ पैर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ पूर्ण होए कदे न होए दुखाला जियो माझ महला पंजवा पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया जल थल महियल दहत वरसाया सांध पई बूझी सब तृष्णा अंध पया सब ठाई जियो सुख दाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नू आप प्रतपाले पै पैरी तसे मनाई जियो जा की शरण पया गत पाईए सास सास हर नाम त्याईए तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर सबसे की आ जाई जियो तेरा मान तन प्रतेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आड़ पैर तो त्याई जियो माझ महला पनवा सबे सुख पय प्रत उठे गुरपुरे के चरण मन उठे तय समाध लगी लिव अंतर सुवरस होई जाने जियो आगम अगोचर साहिब मेरा काट कट अंतर वरत नेरा स अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाणे जियो प्रभ मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुकुम पछाणी सह संतोष सदा तृप्ता से अंध खसम कै पानी जियो हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माझ महला पनवा कीनी दया गोपाल गुस्ताई गुर के चरण वसे मनवाही अंगीकार किया तन करते दो का डेरा टहाया जियो मन तन वसया सच्चा सोई बिखड़ा थान दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो तुझ करे सो आपे आपे बुद्ध स्याण पशुना जापे अपना संतान नु आप सहाई प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आठ पैर आराम ना वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माझ महला पनवा सो सच मंदर जित सज त्याई है सूर्य दा सुहेला जित हर गुण गाई है ता तरत सुहावी जित वस्ते हर जन सच्चे नाम मिटो कुर्बान जियो सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्या जीवे जन तेरे सच सद मन माणो जियो सच सलाहन वडभागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाईए रंग ते तेरे तु भावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई हन दनंतर सच्चा सोई नानक सच त्याई गे सड़ही अंतरजामी जानो जियो माझ महला पनवा रैन सुहावड़ी दिन से सुहेला जब अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमृत पल मंजे जीवन सब तताई जियो सिमृत नाम दो सब लाते अंतर बार प्रसाते पय पो परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊचे पारा नौ दिना परे पंडारा आद अंत मत प्रसोई दूजा लवे न लाई जियो हर कृपा मेरे दीन दयाल जाग जाते साधर वाला देह दान नांग जन मांगे सदा सहर त्याई जियो माझ महला पंजवा ऐथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद मन अवर न कोई करते मैं तर ओढ़ तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्मपुर अंतर जामी जिन सेवा तिन ही सुख पाया तो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सबर ए है कारी जियो दृट कर अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सिविन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो माझ महला पंजवा मन तारता राम प्यारे सर्व दीजे अपना वारे आड़ पैर गोविंद गुण गाइये बिसर ना कोई सासा जियो सोई सजन मीत प्यारा राम नाम सा संग बिचारा साधु संग तरी जे सागर कटिये जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जा जप लख पेवा काम क्रोध किलवे गुरु काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पैस प्राणी साह संग मिले सारंग पानी नानक ना वस्या अंतर
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਕੋ ਦਾਸਾ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਟਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਓ। ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਵਨ ਦਿਖਰ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਰ ਕੁਮਾਈ, ਗਿਆਨ ਧਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਉਥਾ ਪੁਨਹਾਰਾ, ਆਪ ਇਕੰਤੀ ਆਪ ਸਾਰਾ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠੇ ਲਹਿਣ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਸਭ ਸਿਟ ਤਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਓ ਆਪ ਜਪਾਈ, ਗੁਰ ਬੋਧ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਰਸਨ ਜੋ

लागी परम पुहलाणी अग्ञानी अंधा मगना जाने फेर फेर आमन जामने आ गुर सेवा ते सदा सुख पाया होमे मेरा ठाकुर खाया गुर साही मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलामने आ होमे मार मन मसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ध्यावने आ जीवन मरना सब तुदे ताई जिस बगसे ते दे वडियाई नानक नाम ध्याय सदा तू जमन मरण सवारने आ माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगमे पारा बिन तकड़ी तो ले संसारा गुरमुख होवे सोई बूझे गुण कह गुणी समावने आ होवारी जीव वारी हर का नाम मन सामने आ जो सच लागे से अनदन जागे।

जिन रच रचिया तिसे ना जाने, अंधा अंध कमाए, जां भजे तां ठीकर होवे, धाड़त घड़ी ना जाए, नानक गुर बिन नाहे पत, पत बिन पार ना पाए, महला दूजा, देंदे थावो दित्ता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए, तुरत मत चतराई ताकि क्या करे आख वखाणिए, अंतर भय के कर्म कमावे, सोचो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे, इस धर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानिए, तू आपे खेल करे सब करते, क्या दूजा आख वखाणिए, जिचर तेरी जोत, तिचर ज्योति वही तू बोल है, विण ज्योति कोई किस करो दिखा सियाणिए, नानक गुरमुख नदरी आया, आ इको सुगड सुजाणिए पौड़ी, तुदे आपे जगत उपायक, तुदे आपे तंदे लाया, मोठ गौली पायक, तुदे आपो जगत खुवाया, तिसना अंदर अग्न है, नै तिरते भुखा तिहाया, सहसा एव संसार है, मर जम्मे आया जाया, बिन सदगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमती नाम ते आई है, सुख रज्जा जां तुद पाया, कुल उधारे अपना, तन जने दी माया, तोबा सुरत सुहावणी, जिन हर से ती चित लाया, सलोक महला दूजा, अखी बाजों वेखना, विन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना, विन हत्था करना, जीबे बाजों बोलना, क्यों जीवत मरना, नानक हुकुम पछाण कै, तौ खसमै मिलना, महला दूजा, जिससे सुनिए जानिए, साव न पाया जाए, रोला टुंडा अंधला, क्यों गल लगे ताए, भय के चरण कर पाव के, लोयन सुरत करे, नानक कै सियाणिए, इव कंत मिला वा होए, पौड़ी सदा सदा तू एक है, तो दूजा खेल रचाया, हौम में गर्भ उपाय कै, लोभ अंतर जनता पाया, क्यों पावे त्यों रख तू, सब करे तेरा कराया,

असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, कथनी करे तै माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे ना सीझे। इस जुग मह राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम।

मुखवार बोली, गुरमुख रंग पया अत गूड़ा, हा रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर प्रभु की हो गोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली, अरहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हिरदे देख टंडोली, हर घर रूप सब जो सबाई, हर निटवसे हर कोली, हर घर निटवसे सब जाक, अपरंपर पुरख अतोली, हर घर प्रट कियो गुर पूरे, सिर वेचो गुर पै मोली, हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत, तुम वड़ पुरख वडोली, जन नानक अनदिन घर गुण गावे, मेले सतगुर गुर वेचोली, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विधाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, जित मार्ग हम जाते, आराम मेरा मन हर से तीराते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामे नाम समाते रहाओ, हर घर नाम हर घर जग अवखद, हर घर नाम घर साते, जिनके पाव दो सा बिनसे, जो गुरमत राम रस गाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सर नाते, दुरमत मैल गई सब तिन की, जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप, आप ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते, जन नानक नाम लय ता जीवे, हर जपिए हर कृपा ते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करो कृपा जग जी मन दाते, मेरा मन हर सेती राते, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे, हे काल के मुख जग सब गरसया, कुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहाओ, जिनको प्रीत नहीं घर सेती, ते सागत मूड़ न रकाचे, तिनको जन्म मरण अद पारी, विच विचता मर मर पाचे, तुम दयाल शरण प्रतपालक, मोको दीजे दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजे, हम नृत करे कर नाचे, आपे सावडे प्रस्वामी, हम वन जा रे है ताचे, मेरा मन तन जियो राज सब तेरी, जन नानक के सा प्रसाचे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख पंजन, एक बिनो सुनो दे काने, जेते तुम्हार जाने स्वामी, तो सरगुर मेर मेरा प्राणे, राम हम सरगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते, और सदगुर के बचन हर हम जाने रखाओ, जितने रस अन रस हम देखे, तब तितने फीक फीका ने, हर का नाम अमृत रस चाखेया, मिल सदगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सदगुर नी पेटेया, ते सागत मूड देवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीप कमोए पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर घर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जा प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी, तो किथे हर पो नसीए, हर आपे बख्श लए प्रसाचा, हर आप छुड़ाए छुटिए, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए, सतगुर की शरणाई भजको मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिए, रहाओ मेरे मन सेवो सो पर सर्व सुख दाता, जित सेवे निज कर वसीए, गुरमुख जाय लहु कर अपना, तस चंदन हर जस तसीए, मेरे मन हर घर हर घर हर जस उत्तम, लै लह हर मन हसीए, हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर हस चखीए, मेरे मन ना बिना जो दूजे लागे, ते सागत नर जम कुटीए, ते सागत चोर जिन्ना नाम सारिया, मन तिन के निट ना पिटी है, मेरे मन सेवो अलख नरंजन नर हर, जित सेवे है, लेखा छुटी है, जन नान घर प्रपूरे किए, फिर मस्ता तोल ना कटी है, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वस गत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करो घर दर्श दिखाओ।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया केरी।

मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा परगासा जियो, जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगला चौथा, मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत घर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा घर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र घर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर घर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

की लीला माना सोहेला परपंच हीला हर कृपा संतन सत कहया सर्व सुख इव आनंद लहया सा संग हर कीर्तन गाई है कौ नानक वडभागी पाई है जाके हर तन सोई सोहेला प्रभु कृपा ते सत्संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा प्राणी जाने इव तन मेरा बहोर बहोर उहाउ लपटेरा उत्तर कलत्तर ग्रित का फासा हो न पाएगे राम के दासा कवन सो बिद जित राम गुण गाए कवन सो मत जित तरह ए माए रहाओ जो भलाई सो बुरा जाने साज कह सो बिखे समान जाने नाही जीत अरहार यो लेवा सागर संसार जो हल हल सो पी वे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा सा संके नाही नेर लग चौरासी पमता फेर एके जाल फाए पंखी रस रो करे बोरंगी कहो नानक जे पे कृपाल गुर पूरे ताके काटे जाल गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवा कहो कृपा ते मार्ग पाई है प्रभु कृपा ते नाम ते आई है प्रभु कृपा ते बंधन छुटे हो कृपा ते हो में टुटे तुम लावो तो लागे सेव हम ते कछु न होवे देव हरहाओ तू पावे ता गावा बाणी तू पावे ता सच बखाणी तू पावे ता सतगुरमया सर सुखा पर तेरी दया जो तो पावे सो निर्मल कर्मा जो तो पावे सो सतर्मा सरमन दान गुण तुम ही पास तू साहेब सेव अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग।

चख सार जागत होए रहे बिस्मार अमर करुणा पियो प्यारी हे रसराती होए तृप्तारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हूं जाइये साध संगत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली प्रणत मोली फल फुल पेडे इरस राती बोर न छोडे आन न रसकस लवे न लाई कौ नानक पुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तन सजी बार इसी मध्य बस्ते पार इसी पीतर सुनी साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत

कौन सो जान जो सौदा जोर है, मैल साह का किन बिद पावे, कौन सो बिद जित पीतर बुलावे, तू वट साहो जाके कूड़बन जा रे, कौन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत ने कर पाया, अमोर रतन साह दिखलाया, हर कृपा जामे ले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे, गौड़ी महला पंजवा गुवारेरी, रैन दिस रहे करंगा, प्रभ को जाने सदगी संगा, ठाकर नाम की उनवर्तन, तृप्त अगामन घर के दर्शन, हर संग राते मंतन घरे, गुरपूरे की सरणी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार, एक निहारे आज्ञाकार, एको बनज एको व्योहारी, अवर न जाने बिन रंकारी, हर्ग शोक दुहूते मुक्ते, स अलिप्त जो घर जूते, जिसे सब में सबते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान तरते, संतन की महिमा का मनमखानो अगाध बोध।

तू है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सा गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पुनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर ना जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबन धान, साध पूजनी सदगुर संग। नानक जाग पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेश सुखी हुए रही है। ऐसा दाता सबगुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस हुए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाण।

पाला तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हारख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया गौड़ी मोहल्ला पनवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोर पार ब्रह्म रिझाओ रहाओ कौन सो पूजा तेरी करो कौन सो विद जिद पवजल करो कमन ताप जित तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नान सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल तेसी गुण

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समरथ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समरथ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको

स्वामी सब तुमते तू अंतर जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुकम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमाघे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे दास की तूर नान को दीजे गौड़ी मोहल्ला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए।

मिल नानखर अंतर जामी गौड़ी मोहल्ला पनवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रो लहे निवारे ऐसा हारस रमो सब कोय सर्वकला पूर्ण प्रसोए रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारनहार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाहे उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे गौड़ी मोहल्ला पनवा थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वडभागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सोपाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर संग राते पाए ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुभल फला, सप मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

तू संग हमारे बह जियो रहाओ, कुछ बिन करी ना जीवना, रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातिया, निमक निमक बलिहार जी, हस आलंबन देव प्रभ, घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया, तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला, हवन विधि विचार, शरण समाई दास हित, ऊंचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा, सेजन हर गुण गाहे, माल पिता सुद बंद को, तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक पजे, हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन, रहोए के, शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, हय कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सद पावे, हरहाओ, बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, योगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन्म मरण

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं, हो साग त्या भय जाहे। जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कहे सुन रे मना।

पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर में ले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौ लो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटया तो आनंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए एते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भए जौ लो मेरो मेरो करतो तौ लो भे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर पूरा मिलया तौ नानक निरभय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरमल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आगे ओ रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासुरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गयो निरपो पय संत प्रमंडारियो पूर्ण सर्वाग्यो जोगज करते कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने

तो जग सारी तृप्त अघाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके हखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके आचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे पर्दा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पराई कहो न जाई यो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पै बेगासा गोर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला मोहल्ला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन यूं कहया बिन घर भजन नहीं निस्तारा।

दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब कुछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा जा।

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूरया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिये आई कार, इन बिग राम रवत मन मान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछान्या, रखाओ एक सुख मान्या सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादंग अहंकारा, चित हर स्यों राता हुकुम अपारा, जात

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन भोर नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल भाए उलासा, नानक हरस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हड़ कर मरे न लेखे पावे, वेश करे बो पसम लगावे, नाम सार बोल पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सूख, नाम सार सह जम दूख रखाओ, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पर दूर, नाम सारे

पद पाईए ना मने ऐसो होय, सगुर ते नाम पाईए तरम मिले प्रसोय, सगुर ते जो मोह फेरे ओए परम दे ना टिकन, तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन, यो जग परम भुलाया मोए ठगो ली पाए, जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए, सगुर सेवन सो सोहणे होमे महल गवाए, पवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए, हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति जो पावे तवे छिड़ाए, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हले, एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर हले, मन परदेसिया क्यों मिल गए घर माए, गुर पाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए, मन कर हला सतगुर पुरख ते आए, हरहाओ मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लय।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आप

कै एक बखानन नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखी अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण धिटारं सगल पांड कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खा पुकारते माया मो सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी।

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब ताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना धारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना ते मिट नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभ आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो आप दिवायो।

एक नाम ले मने परो यैया जन्म नहारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सुत नाही बसे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बोर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए टहे तो टहेद अब टह परे साजना सरनाए दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे सुमाई नानक दे जन्म मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहू जो खिर में ऊने सुबर भराहू खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्बानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक।

स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जा कुदरा गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखबनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सदगुर प्रसाद आदगुर ए नमः जुगादगुर ए नमः सदगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन मय मिटावो सिमरो जास विषम पर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखिर इन्ने राम नाम एक आखिर इनका एक जे जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दस्त हुआरो नानको संग हुए उधारो सुख बनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कई मन बसराम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न बस प्रभ के सिमरन दुख जम नस प्रभ के सिमरन काल पर हर प्रभ के सिमरन दुश्मन टर प्रभ सिमरत कछ बिघन न लाग प्रभ के सिमरन अन दिन जाग प्रभ के सिमरन पौ न व्याप प्रभ के सिमरन दुख न संताप प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन हृदय सिद्ध नव निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जप ता पूजा प्रभ के सिमरन बिन सह दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इस नानी प्रभ के सिमरन तर्क है मानी प्रभ के सिमरन हुए सो भला प्रभ के सिमरन सुफल भला से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझ प्रभ के सिमरन सब के सुज प्रभ के सिमरन नाही जमत्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदमाए सुमाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंत प्रभ को सिमरह से पुतवंत प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोताज प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिगारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन रमल रीता प्रभ को सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कार्य पूरे प्रभ के सिमरन कभु ना चूरे प्रभ के सिमरन हर गुरबानी प्रभ के सिमरन सहे सुमानी प्रभ के सिमरन नित्यलयासन प्रभ के सिमरन कमल बेगासन प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार सुप्रा सिमरन का अंत न पार सिमर है से जन जिनको प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत पगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आम निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख पंजना घटघट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ अष्टपदी जय मात पिता सुदमीत न पाई
मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भयान दूध जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अद पारी हर को नाम खिर महे उधारी। अनक पुने चरण करतनी तरै हर को नाम कोड़ पाप पर हर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिघना बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग इहो जात अकेला तय हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आईए नानक गुरमुख परम गद पाईए। टूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराही। अनक विघ्न जय आए संघार हर का नाम तत्काल उधार। अनक जून जन्म में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कभू न थोवे हर का नाम कोड़ पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग। जे मार के गणे जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पन तेरा को ना सुजानू हर का नाम तय नाल पछानू। जय महा भयान तप्त बो काम तय हर के नाम की तुम्हें ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष तय नानक हर घर अमृत बर।

सगलकटा को देवदान करणक रावण हार सुवामी सगलकटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनेया तो प्रभु सदा सुमाल जिनकी ते चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी।

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोड़ गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा को कहा करे जे ठाकर सो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सो अपनी दे रास खाद पीत बरते अंधे उलास अपनी अमान कछ भौर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्तुत आज्ञा रख प्रभ की आज्ञा माने मत उसते चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत दीर्घ की छाया सो रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसे सो चलन हार लपट रहे हो तय अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ न आवे केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे हस्त मिथ्या त्रो मो अवमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर्व कार को थावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पारे पुकारा मिथ्या बासले दिवकारा बिन बूझे मिथ्या सा पए सबल दे नानक हर हर नाम लय बिरती सागत की आरजा साज बिना के होवत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जान नहार प्रभु परवीन बार पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आपत जावत जन्मय मरे जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रवजाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप कर तनबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान पर सगलते रहत सब का जाने आत्म की रहत जिस पावे जिस लय लड़ लाए थान सनंतर रहा सुमाए हो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह फिर सजाए अहमेव नानक प्रसरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत गाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस को सिमरत परम गद पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर किसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद त्रे संग सुख बसना आड़ पै सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस कोग नानक सदा त्याये त्या मन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तद अवर लोभावे जे प्रसाद तुग सेज सोई जे मन आड़ पैरता का जस गावी जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्राप जी जबत दर्घय मान पावे नानक पासे ती कर जावे
जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकर प्रोताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पैरीज मन ते सिमरत क्यों आलस कीज जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन ते प्रभु को कभू नाम सारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत से ते आई तिसे ते आए जो एक अलख ईगा ऊगा नानक तेरी रख जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आड़ पैर कर सका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी ते प्रभु को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप हो प्रा सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात हो प्रा सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद पेखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद तुख सहजे बसना जे प्रसाद कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद तुख सह सुमावे ऐसा प्रत्याग अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रट संसार ते प्रभु को मूल ना मरो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तेरे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साथ रे मन मेरे तू ता सुरात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जब सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गवाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रसो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वदान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अवमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रवनेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग ना कतहु तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रसो प्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सवे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त्या गोचर लहे साधु कै संग अजर सह साध के संग बसे स्थान ऊचे साधु कै संग महल पहुचे साध के संग त्रिड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए ना मन दान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग तब कुल उधार साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਆਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਬਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰਹਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਈਗਾ ਉਹਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਕੜਕਾ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਮਾ ਤਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਜ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਜ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਏਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ

कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सिद्ध का करता, ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,

प्रवते हुए प्रम है सुमत ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदगी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्मरस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जलतल मही अलसोय अष्टपदी

कबहु होए बहे बड़ राजा, कबहु पेखारी नीच का साजा, कबहु अब कीर्त में आवे, कबहु पला पला कहावे, यूं प्रवरा के तिव ही रहे, गुर प्रसाद नांग सच कहे, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन तारी लावे ध्यान, कबहु तड़ती स्नान, कबहु सिद्ध साधक हो ज्ञान, कबहु कीड़ हस्पतंग हो जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

रेणूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जू लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को शले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संदोकी का थाओ को नागे नानक संत पावे ता ओए पीगत पागे संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा तेयारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख कर एक रंग नाना बिद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे।

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गतमित कोई न लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊजते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहज प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोड लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर घर सिमर प्राण आधार अनक पावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबंता इन ते कहो तुम कमल सनाथ राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कमल छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंप चूड पासारी जिन दिए ते बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माघे जन्म जन्म के किलबिख जाघे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ गुण गाव।

पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते भय एक अराद प्राश्त गए मन तन अंतर ए प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाय नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी याचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम ताजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होय हारस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर परगास अनदिन निवलाग बड़भागी जप्या प्रसोय नानक नाम रते सुख होय सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इस पुनी सरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम सुमाए सो क्यों बिसर जे काल ना पन सो क्यों बिसर जे की आ जाने सो क्यों बिसर जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसर जे जीवन जिया सो क्यों बिसर जे अगन मैं राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसर जे बिखते काढ जन्म जन्म का टूटा गंढ गुर पूरे तत हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पै तरिगे संसार इन भक्ति तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होय मन बिकसे साध चरण तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को उपावे संग एक बल्दी जे कर्मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व सुमाए प्रभ संत दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप सो होए पुनीत भगत पाय लावे मन गीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अंतराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर घर नीत पली सुकरणी सोपा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संग प्रद्यो निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार।

तब चित्र गुप्त इस पूछत लेख जब नाथ निरंजन अगोचर अगध तब कौन छुटे कौन बंधन बद अपने आप की अचरजा नानक अपन रूप आप की उपरजा ये निर्मल पुरख पुरख पद होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकाल निर्वाण ते कौन को मान कौन अवमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल छिद्र लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग सुमावे ते किसे पूख तमन त्रिवतावे तरन करामन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई जय सर्व कलाया पे परवीन तय वेद कतेव कहां को चीन जब अपने आप उर तार तो सगन अब सगन कहां विचार जय अपने ऊच अपने आप नेरा ते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्मर है बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जय अशल अछेद पे सुमाया ऊगा किसे व्याप तुमाया आस को आपे आदेश त्यो गुण का नाही परवेश जय एक एक एक भगवंता ते कौन अचिंत इस लागे चिंता जय अपने आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आप सको आपे पहुचा जय आपर चोपर पंचकार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पापुन ते पई कहावत को नरक ओ सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मो परम पय पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच हो नानक एक जे अवगत भगत तय आप जे पसरे पासार संत प्रताप धूपा काया पे तनी उनकी शोभा उनहू बनी आपे कौतुक करे अंध चोज आपे रस पोग निरजोग जिस पावे तिस अपन नाए लावे जिस पावे

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजिए मलहो में कड्डे तोय, सच वणन जय रंग स्यो सच सौदा होय, टूटा मूल न आवई लहार पावे सोय, नानक तिन सच वणन जया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साराई सच सालाना स सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मनवसे स सच्चा हरख वाले, स सच्चा जिनी अराध्या थे जाय रले सच नाले, स सच्चा जिनी ना सेवया थे मनमुख भूड बिताले, ओ आल पताल मोह बोल दे जो पीते मद मतवाले, श्लोक मोहल्ला तीजा गौड़ी लाख सुरखणी जे खसमे चित करे पाणे चले सदगुरु कै, ऐसा सीगार करे सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे, जो उबली मजीठे रंग गह गह त्यों सच्चे नो जियो दे, रंग चलू ले अतरती सच्चे सू लगा ने हो, कूड ठगी गुजी नार है कूड मुलम्मा प्रेट त्रे हो, कूड़ी करन वड़ाइया कूड़े सू लगा ने हो, नानक सच्चा आप है आपे नदर करे महला चौथा, सत संगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारे, वे पुरख प्राणी तन जान है उपदेश करे परे उपकार।

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना होवी बगला है। भाई साधना विचारिया, सतपुरख की तपा निंदा करे संसारे की।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतन जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई तिस्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई।

जी उबजे निबजे निबज समाई नयन देखत इहो जग जाई लाज ना मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कछ तेरा रखाओ अनक जतन कर काया पाली मरती बार अग्न

आप मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत हारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बहुरंगा ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शत्रपत कबहू पेघारी सागत मरे संत सब जीव राम रसायन।

ठाकुर पाई, मुक्त अनंत पुकारण जाई। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन ने होरा रहाओ। तीन लोक जाके है पार, सो काहे ना करे प्रतपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, क्या बस जाओ बिगदे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेहो। जब लग रस तब लग नहीं नेहो। अरहाव सहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले ना सुपने। तान मन तान गृह सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी दिखिया व्यापिया सगल संसार।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। संकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खुद जो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी आहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जान पर कर जातन सोही। सो साहेब रहया पर पूर, सदा संग नाही हर दूर।

आओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर पुकार काढ लीन सागर संसार चरण कमल स्यों लागी प्रीत गोविंद बसे निता नद चीत माया तप्त बुझिया अंगयार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रमणी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई।

चल आप गए और न हूँ काले शाड को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हूँ को कयो न माने आप गए और न हूँ खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे आवर नभस्त।

तेरा बोल तकां सुमाई। ए संसार मोको अन दिन व्यापै, मोको ओ ना कह समझाई। रघाओ जैवर पंड पिंड तय नाही, रचनहार तय नाही, जोड़नहार उसदा अतीता। ए कही ए किसमाही, जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी। ताको ठाकुर ताको सेवक, ओ काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है, जहां बसे दिन राती। हुआ का मर्म उही पर जाने, ओ तो सदा अविनाशी। गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा, पर मित बार खिंता। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प विवर्जित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मर्तना सोग बेयोगी। रहाओ खंड ब्रह्मंड में सिंगी, मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे होए पसारी। मन पवन दे तूंबा करी है, जुग जुग सार दसा जी। फिर पीतंती तूड़ सनाही, अनहद किंगुरी बाजी। सुन मन बगन पए गए पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीर ताँ कौ पुनरब जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाव गज दस गज इक्कीस, पुरिया एक तनाई। साठ सूत नवखंड बहत्तर, पाड़ लगो अधकाई। गई बुनावन माहो, कर छोड़े जाए जुलाहो। रहाओ गजी ना मिनिये, तोल ना तुलिये, पाचन शेर अठाई। जाओ कर पाचन बेग न पावे, चगर करे कर गाई। दिन की बैठ खजम की बरकस, ए बेला कते आई। चूटे कुंडे पीगे पुरिया, चलो जलाहो रीसाई। शोशी नली तंत नहीं निकस, नतर रही उरझाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी, कहो कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली, किम्बा होए महोए। जित कड़ नाम न उपजे, हूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोहे। हरहाओ साध मिले सिद्ध पाईए, के एहो जोग के भोग। दो मिल कार्ज उपजे, आराम नाम संजोग। लोग जाने यो गीत है, यो तो ब्रह्म विचार। ज्यो कांसी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परमगत पाए। गौड़ी जेते जतन करते डूबे, भव सागर नहीं तारियो रे। कर्म धर्म करते बो संजम, अंग बुद्ध मन जारियो रे। साध ग्रास को दा तो ठाकुर, तो क्यों मनो बसारियो रे। हीरा लाल अमोर जन्म है, कौडी बदले हारियो रे। रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी, हृदय नह बिचारियो रे। उन मतमान फिरे ओ मन माही, गुर का शब्द ना तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद्र लयद बकारियो रे। कर्म पाग संतन संगा ने, काष्ट लो उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रथा के, आप दुख कर हम हारियो रे। कहे कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी, मन बौरारे। चलतर चो जगदीश काम सुवाए, गज पद परे मन बौरारे। अंकस सहे ओ शीस, बिखे बाच हर रात। समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पदे मन बौरारे। गयो न

इस माटी में पम सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोंग में उरतब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर नटायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तय रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करीजे,

आद करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

अवर्ण करना जाई। जैसा वर्ते तैसो कहिए, सब तेरी वड्याई। कल कलवाली माया मद मीठा, मन मतवाला पीवत है। आपे रूप करे बो भांति, नानक बपड़ा एव कहे। आसा महला पहला, वाजा मत पखाव जपाओ। होए आनंद सदा मन चाओ, एह भगत एहो तब ताओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ, पूरे ताल जाने साला। और नचना खुशियां मन माह, हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल। पैरी वाजा सदा निहाल, राग नादनी दूजा पाओ। ए तरंग नाचो रख रख पाओ, पाओ फेरी होवे मन चीत। बहिंदिया उड़दिया नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहो। ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

परमल रूप उजल मोती चुगे हंस सर्व कला जगदीस अंश जो दिस सो उपजे बिनस बिन जल सरवर कमल न दिस रहाओ बिरला बूजे पावे भेद साखा तीन कहे नित बेद नाद बिंद की सुरत सुमाए सदगुर सेव परम पद पाए मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा दिगसंतो जिस तू राखे किरपा तार बूढ़ पाहन तार तार तिर पौन मैं जोत तिर पौन मैं जानिया उल्ट पई कर कर मैं आनिया अहिंस भगत करे लिवलाए नानक तिनके लागे पाए आसा मोहल्ला पहला गुरमत साची हुजर दूर बहुत सियाणप लागे तूर लागी महल मिटे सजनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए हाय हजूर हाजर अरदास दुख सुसाच करते प्रपास रहाओ कूड़ कमावे आवे जावे कैन कसन वारा नहीं आवे क्या देखा सूझ बूझ ना पावे बिन नावे मन तृप्त न आवे जो

अमृत चख सतगुर सेव अमृत शब्द पाख साचे शब्द मुक्त गल पाए नानक विचो आप गवाए आसा महला पहला जो तनकिया सो सचिया अमृत नाम सतगुर दिया हिरदय नाम नाही मन पंग अनदन नाल प्यारे संग हर जो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी गरस पाया ना पदार्थ नौ निरपाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन प्रमाण तिनकी संगत परम निधान हर वर्जन पाया तन नारी हर सो राती शब्द विचारी आप तरे संगत कुल तारे सदगुर सेव तत् विचार हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सद पाओ नानक बख्शे पूछ न होए दूजा मेटे एको सोए आसा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक आ रते रहे सुमाई एक तरण गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई यो संसार बेखवत अद फौजल गुर शब्दी हर पार लंघाई हरहाओ जिनको आप लय प्रामेल तिनको काल न सके पेल गुरमुख निर्मल रहे प्यारे ज्यो जल अम्ब ऊपर कवन निरारे बुरा पला को किसनु कहिए दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लइए अकथ कथो।

आए, नदर करे इतना सदगुर मिले, परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मोहल्ला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज कामना ही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही, हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे, अखर देख बाग पै चोखी, सिंचित पाओ करेगी, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी, जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही, कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही, आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है तोती, ज्ञान जिनेऊ ध्यान पुष्पाती, हर नामा जाजा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ, पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामो पढ़ो, नामे चज आचार रखाओ, बार जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम सुमाल, ऐथे उथे निभगी नाल, विण नावे होर कर्म ना पाल, पूजा प्रेम माया परजाल, एको वेखो अवर न पाल, इन्ने तत गगन द्वार, हर मुख पाड़ पड़े विचार, भोजन पाओ परम पाओ पागे, पारू रश बचोर न लागे, तिलक ललाट जाने प्रवेक, बूझे ब्रह्म अंतर बवेक, आचारी नहीं जीत्या जाए, पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए, अष्टदशी चौपेद न पाया, नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ, सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैलनी खजम सुने साबास, सच्चे तख्त बुलावे सोए, देव डयाई करे सो होए, तेरा तान तू है दी बाण, गुर का शब्द सच निशान, मन ने हुक्म

तू सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार नकाई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाणे। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल तिन नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे।

आग हुमारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निस बसर प्रे संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूध की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो ना जाई रहाओ टोट ना आवे निखुट ना जाए खाए खर्च मन रह अघाए सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना इस तन ते सब जग बरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरबल के का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मोहल्ला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काती पाकी बाढ़ परानी जो जन्मे तो जन हो मुआ गोविंद भगत अस्तर है थिया रहाओ जिनते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे तो रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गई है नीत मुख उज्जल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौनद तेरे सगल ने

हर हस चोट होशे रस्म माता कारमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

रब रहे आप सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एक को एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर

मुक्ते ए बबाड़े आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने गार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यों हस्ती खाक शाने संत सज्जन

कहो नानक नित इवे तिहाय गत होवे संते लग पाई। आसा महला पंजवा उठत बैठत सोभ त्याईये मार्ग चलत हरे हर गाइये। श्रवण सुनी जे अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग मन सगले लथा। रहाओ कार्ज काम बाढ़ काढ़ज पीजे गुर प्रसाद हर अमृत पीजे। दिन सरैन हर कीर्तन गाइये सो जान जम की वाट न पाइये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाई। आसा महला पंजवा जाके सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास। अंध करो प्रभु के गुण गाव तद गुर अपना साध सदा मनाव।

पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, ना प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर किरपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चै नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जौ सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

प्रीत सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घड़ घड़ आधार, रहाओ प्रभु की प्रीत पै सगल निधान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत स शोभावंत, प्रभु की प्रीत स मिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत तो पव जल तर, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरे, प्रभु की प्रीत सगल उधारे, प्रभु की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले ना फूले, जिस कृपाल तिस सा संकूले, ओ नानक तेरे कुर्बान, संत ओढ़ पर तेरा तान, आसा महला पंजवा, उबत होए के राज कमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रवस्ते डार अवर को दीनी, काग गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ वाहू में परिया, रहाओ निरपो होयो पया निहंगा, चीतन आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संभाहा, निकस्या भूख ता होए गयो स्वाहा, ऊंचे मंदर मैल अररानी, हस्त कोड़े जोड़े मन पानी, वड़ परवार पूत अरतिया, मोए पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाह तिने बिनाहा, रंग रस जैसे सुबनाहा, सोई मुक्त इस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन सो प्रीत करी कनेरी, जौ मिलिए तो वधे वधेरी, कल चमड़ी जो छोड़े नाही, ला छुट्टो सगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह, बाढ़ ताट गृह बन बन जोह, मतन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी जीठी, अगर उसके वडे ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मिली अपने उनले बंदे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सा फंद, कहो नानक तैं सतगुर पाया, हर सगला में सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पक्षार, संत रहे सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जाके केवल नाम, अंदर रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समाने, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर वीर बजन के बली, कौला बपरी संति शली, ताका संग बाचे सुरदेव, अमोग दर्श सबल जाकी सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मुझे संते टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जग एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महा पवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रवरंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जे सिमरत मन होए परगासा, ताकि गतमित कहन ना जावे, अरहाव वर्तनेम मजन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रत्यो योजन सगले पवन।

मोए गरीब को लियो रलाए, नानक आए पैसरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पैर उद किसनानी, तदी पोग लगाए सो ज्ञानी, बिरथा काहू छोड़े नाही।

पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगर तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़या रहाओ लाल जवेर परे पंडार टोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परमगत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा गए नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहे आ मानिया सूग सहज इस कर का जानिया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्तनेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमें पचे मनमुख मुंह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संत से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जांत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया काल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन

सर्व सुख पावे, आवर कहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्राह्मण वासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमागी, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री गृह जाके पूरन प्रभ के सेवक।

ओंकार सतगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहिब मेरा जियो पिंड सब किसदा सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुर पूरा पेड़ सी सो चले रजाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ती पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा क्यों कीजे दाना रहाओ भागठ सच्चा सोए है जिसर तन अंतर सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार ओ आ जुगा दी जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार घोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेख मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर ना बिहूनड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरियाओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर साल आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो नट हंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई देया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा साहा नानक की लोचा पूर सचे पात सह आसा महला पंजवा पूर रहा सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोए जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुम अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना चूरिये नानक दर्श प्यास लोचा पूरिये आसा महला पंजवा क्या सोवे नाम सार गाफल गह लिया किती इधरी आए वंजन वहन्दिया बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाए साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना
ਮਾਂ ਵਿਗਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਲੇ ਪੇਖਿਆ ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਸੰਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪੌਜਲ ਤਰਬੀਏ।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुखिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साधे सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मेल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग गए जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना गिरड़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सतसंगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किस किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत खट खट खट खट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

आया सेव कमाया गौन रस रस गावे एक है अस दर्स ते अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सदगुर केटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम सिउ लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम बिन तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निकर्त से थानः हार रस रसे मानः लाती त्रिपुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन बिद सुनीगा।

कहे कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए माया मोह गुर शब्द जलाए निर्मल नाम सद हृदय कहाए तापत राखे ठाक रखाए सिख संगत कर्म मिलाए गुर बिन पूलो आवे जाए नदर करे संजोग मिलाए रूड़ो कहो न कहे आ जाई अकथ कथो न कीमत पाई सब दुख तेरे सूख रजाई सब दुख मिटे सच नाई कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला तिर पवन सूजे आप गुवावे पानी बूझे सच सुमावे शब्द विचारे एक लिवतारा नानक तन सुवारण हारा आसा मोहल्ला पहला लेख असंख लेख लेख मान मन माने सच सुरत वकान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख अपार ऐसा साचा तू एको जान जमन मरण हूं पछाण रहाओ माया मोहे जगबादा जमकाल बंदा शूटे नाम समाल गुरसुख दाता अवर न पाल हलत पलत निर्गी तुद नाल सद मरे ता एक लिवलाए अचल चरे ता परम चुकाए जीवन मुक्त मन नाम साए गुरमुख होए ता सच सुमाए जिन तर साजी गगन आकाश जिन सब तापी ताप उताप सर्ब निरंतर आपे आप किसे ना पूछे बगसे आप तू पुर सागर मानक हीर तू निर्मल सज गुणी गहीर सुख मन भेटे गुरपीर एको साहेब एक वजीर जग बंदी मुक्ते हो मारी जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर पेटे सा फिरे अंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोय जग रोगी भोगी गुण रोए जग उपजे बिन से पल खोए गुरमुख होवे बूझे सोए महंगो मोल पार अपार अटल अछल गुरमति तार पाए मिले भावे पैकार नानक नीच कहे विचार आसा महला पहला एक मरे पंचे मिल रोवे हौ में जाए शब्द मल तोवे समझ सूझ सहज कर होवे बिन बूझे सगली पद खोवे कौन मरे कौन रोवे ओही करण कारण सबसे सिर तोही रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोए सो रोवे जिस बेदन होए जिस बीती जाने प्रसोए आपे करता करे सोए जीवित मरना तारे तरना जय जगदीश परमगल सरना होमले हारी सदगुर चरणा गुर बोहेत शब्द पै तरना निरप आप निरंतर जोत बिन नावे सू

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

बंधन सौदा अणविचारी तिरत नाही माया मोह पसारी बंधन सा संके तन जाए बिन घर पलत ना पवई थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सदगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला अष्टपदिया कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर सिसर काती मुनियन गलब च आवे धूड़ महिला अंदर होंदिया हुण बहन ना मिलन फदूर आदेश बाबा आदेश आदि पुरख तेरा अंत न पाया कर कर देखे वेस रहाओ जदो सियां भी आईया लाड़े सोहन पास ही डोली चढ़ आईया दंद खण कीते रास उपरो पानी वारी है चले चिमकन पास एक लख लैन बैठिया लख लैन खड़िया गरी शुहारे खांदिया माणन सेजड़िया तिन गल सिरकां पाईया टुटन मोत सरिया

नीत नीत कर बंधिए दे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो, जिसते सुत्ता नानका जागा ए सोई, जे कर बूझे अपना ता नींद ना होई, जे चलदा ले चलिया केश संपे नाले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वंज करो मसूद लहो

तनी साचा मुख नाम रघाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरे साचे गुर बुद्ध। योगी पोगी कापड़ी

गर्व बन जाइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वस्या मन सोई। आपे दे वड़े आईया दे तोट न होई,

पड़ी दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जे ती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुक्म ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना फैदे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोई न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुरसेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उरतार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तिसना अगन बुझे नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप भुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम भूलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पवन में एक का माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सुबाया सतगुर सेव सदा सो पाया।

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हा हो कर दी सब फिरे, बिन सबदे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुमाए, आसा महला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रकट होए, ए मन रूड़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग ले ना जाए, अरहाव हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोते पार, बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पाए पाए जोरते, सिवती सच सुमाओ, पाए बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने, झूठे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रबसी, सत्संगत मेलाए, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रह, जैसे पलटोर, जिनकी तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे,

एक तोर पवित पावन है तुद न मेन लाए गुर सेवा ते सुब उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते ना वो आप खुवाए ना और सिद्ध ना बुद्ध गए ना सजमी फिरे उत्वताए नदर करे जिसे अपनी तिसनू पाव नहीं लाए सर संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुंची है तद कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सर शब्द सोझी पाए यो मन देही सोध तू गुर शब्द विचार नानक ए देही विच नाम निदान है पाईए गुर के खेत अपार आसा महला तीजा सचरतिया सुहागणी जिन्ना गुर के शब्द सीगार कारगी सो पिर पाया सच्चे शब्द विचार आप गुण गुणी बगसाया हर च्यों लिवलाई हर वर पाया कामणी गुरमेल मिलाई हरहाओ एक पिर हदूर ना जाननी दूजे परम फुलाए क्यों पाए डोहागणी दुखी रहन विघाए जिनके मन सच वसया सच्ची कार कमाए अनदन सेवे सहज स्यों सच्चे माए समाए दुहागणी परम पुलाईया कूड़ बोल बिख खाए पिर ना जानने अपना सुनी से दुख पागे सच्चा साहब एक है मत मान परम पुलागे गुरपू सेवा करे सच निर्मल मन नमसाए सुहागणी सदा पिर पाया होमे आप गवाए फिर सेती अनदिन गए रही सच्ची से सुख पाए मेरी मेरी कर गए पल्ले किश ना पाए मैल नाई डोहागणी अंत गई पछताए तो पर मेरा एक है एक स्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़े कामणी हर का नाम मन नमसाए आसा महला तीजा अमर जिना चखायोन आया सहज सुपाए सच्चा वे प्रभाव है किसनू

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कह पाए प्यार से सुखाली पिर रवे। हम मैं तिसना मार कर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुने बगसाए लए ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेकी नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंध पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु

सो करी प्यारे, आवर किश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे, जे चपिए हर नाओ साई कार कमावनी प्यारे, पुर मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे, घट घट रहा समाए, संसार कूब ते उधर ले प्यारे, नानक हर सरनाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटजन साजी, सबना साहेब एक पया, सेव तरह चित जिनका लागा, आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता, आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे, तेस सिर लेखना होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया।

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बांधया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाए जन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया ताड़ पांडे जन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने एन बिद साहेब रमत रहे चचे चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाई गए आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जाचे लग चौरासी पीह पया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहा दे दे वेखे हुकम चिलाए ज्यो जिया घर जिक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एक और अवर या सब थाई एक वसया मन माही तट टंच करो क्या प्राणी कड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जमन हारो अपना पाज पड़ो तुम घर सरना ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना किसे सिरे वो तासु पाव सर्ब निरंतर रब रहे टड्डे टाए उसारे आपे जो तुझ पावे तेरे करे कर कर वेखे हुकम चलाए तिस निस्तारे जा को नदर करे हणाणे रबत रहे काटे अंतर हर गुण गावे सोई आपे आ मिलाए करता पुनरप जन्म न होई।

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पिछाणे ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे। तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने। नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोकाने।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लयन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन है सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना का।

शांत कारतीजा साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो भगत

भगत भाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सोहर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोयला तेन सस दा जो हर गुण गावे। हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरी केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले। मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले। साध तेरे सो सो सदा है एक

मैं नाम समाया जिन अंतरे राम नाम वस तिन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाए दुरमत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासया नानक हर पसदा दिन राती गुरमुख निर कर वासया जिन श्रद्धा राम नाम लगी तिन दूजे चित न लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नावे अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया अंत चलदियां नाल सिखाई राम नाम तन पूंजी संची ना डूबे ना जाई राम नाम ए जुग में तुलगा जमकाल नेड़ ना आवे नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे रामो राम नाम सत्य सत गुरमुख जानिया राम सेवको गुर सेवा लागा जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम मंतन अर्पया बहुत मन सरदया गुरसेवक पाए मिलाए दीना नाथ जिया का दाता पूरे गुर ते पाए गुरु सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए राम नाम मंत हिरदय देव नानक मिलन सुपाए एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा शांत महला चौथा कर दूजा हर घर करता दुख बेनास पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गद पाई हर उत्तम हर हर काम जियो हर उत्तम काम जप गे हर नाम हर जप गे अस्थिर होवे जन्म मरण दोवें दुख मेटे सहजे ही सुख सोवे हर घर कृपा तारो ठाकुर हर जप गे आत्म राम जियो हर घर करता दुख बिनासन पतत पामन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल जुग उत्तम हर जपिए सब गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जबत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसया हर नाम परम सुख पाया सब

प्रधान जीओ तिन हम चरण सरे वेखिन खिन भगत होवै जिन हर मीठ लगान जीओ हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब ए दृट समत कर देख सब आत्म राम पछाण जीओ हर हर जस गाया परम पद पाया ते ऊतम जन प्रधान जीओ सत संगत मन भाई हर रसन रसाई वे संगत हरस होए जीओ हर हर आराध्या गुर शब्द वेगासिया बीजा अवर ना कोए जीओ अवर ना कोए हर अमृत सोए जिन पिया सोबिध जाने तन तन गुरु पूरा प्रापाया लग संगत नाम पछाणे नामो सेव नामो आराध बिन नामे अवर ना कोए जीओ सत संगत मन भाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जीओ हर दया प्रतारो पाखण हम तारो कढ़ ले वो शब्द सुपाए जीओ मोची कड़ फाथे निगरत हम जाते हर भां प्रभु पकराए जीओ प्रभा पकराई उत्तम मत पाई गुरचरणी जन लागा हर हर नाम जप्या आराध्या मुख मस्तक पाग सुभागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर घर मीठा लाए जियो हर दया प्रतारो पाखण हम तारो कड़ ले वो शब्द सुपाए जियो आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत ज नाम मन चाओ जियो जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुखोई जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई मन हर हर वसया गुरमत हर रसया हर हर रस गटाग पी आओ जियो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जी नाम मन चाओ जियो जग मरण न पाया निद आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो हर अंतर बार हर प्रभ एको यो जीड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो खीजे हर वस्तु लुड़ीजे जिसकी वत सो ले जाए जियो मनमुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो जिसकी वस्त प्रभ लये स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकरे ले जाए जियो तो मरण लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवें दुख मेटे हर रामे नाम सुमाया हर जान प्रभ रल एको होए हर जान प्रभ एक समान जियो तुर मनन लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो जग उपजे बिन से बिनस बिनासे लग गुरमुख अस्थिर होए जियो गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर भौड़ मरण ना होई हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावे सोई जन नानक नाम आधार टेक है बिन नावे अवर ना कोए जियो जग उपजय बिन सह बिनस बिनस लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो ताकि गद कही न जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कही है जो तुद आख मखाने जिसनु नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर

न अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कछु जानद, सिर रोग हथ दीजे, जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखां मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवे पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुर सिखां की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखां मन वाधाइयां, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखां मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानक हर घर होया, हर घर मन उठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिसकी तिसना पुख सब उतर, जो हर नाम ते आवे, जो हर घर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक कौ हर कृपा कर, निध जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिन्नी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम

हाथो मिर्ग जेवै पेख रैन चंद्रायण, सुखे दुख पहे निद पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाहीं,

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिन सुभागे, मिल नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल कलमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देहत मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिनके हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिये साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया।

अंधी रित ज्ञान विगूणी भाए परे मुरदार। ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सीगार। उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मोह द्वार। जति सदावे जूत न जाने छड बह करबार। सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे। पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे। महला पहला वदी सोवजग नानका सच्चा वेखे सोए। सबनी छाला मारिया करता करे सोए। अगे जात ना जोर है

दास है। सोई निरंजन देव महल्ला पहला, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मान रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया होवे गुनहगार, ता ओमी साधना मारिए। जेहा काले कालना, ते वेहो ना उपचारिए।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किनू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुरक करेगा, अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुरक जे होएगा।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, ऐ सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

बिसन डारी पूर संकर देओ, तीन देव परतख तोर है करे किसकी सेओ, पाखान गड़के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त सा

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फेरे चरण शीश कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे हार जियो कृपा करे लिवलावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहेत कबीर सुनो रे संतो आन तान कछुए लय ना गयो आई तलब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो।

मूड में लागे खिन में करे नबेरा हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई जोत पावे सत कर माने।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेज सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बस थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछाने।

की आस कर जम निहारे सासा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो पांचो तत बराती राम राय सो पावर लय हो।

आस बड़ पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ एन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रम।

अचेत संप उन पाप असोच मानुखा अवतार दुर्लभ तेही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए ताल फास अबद लागे कछ ना चले उपाय रविदास दास उदास ताज प्रम तापन तब गुर ज्ञान भगत जान पै हरन

संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे, दीजे देवा देव रखाओ, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च

अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे बसा। नीच रूख ते ऊज पए है, गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम परे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे

हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम दियो दूध पी आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है। मान बज क्रम रस कसे लुभाना, बिरस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रामत फिरत बो जनम बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे। लालच बिख काम लुभ राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरन फिर तानिया। जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे। बिख बल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये। जोत समाए समानी जाके, असली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग,

त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई हरहाओ जननी केरे उदर उदकमै

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहु को मात्रे जी डराही आसा शेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सत्या जिन मन होर मुख होर ते कंडे कत्या।